ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ।

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

मंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बिकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा। रसना

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

निर्मल मन करण, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

खसम कढाई किरत कमावना, मंदाक सैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना, जो दे सहना मन है कहना आख नाही वावना, वारे खसम कढाए किरत कमावना।

सदा सुख बस है, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विभूति।

राम। हर हर सतगुर करहे भक्ति, जा हर प्रभ कृपा तारे। मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल देह थाराम सम्राथ शरणा।

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। औगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख, जिन

जाए। सतगुर मिलै तां निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ते आया, सुख दाता दुख विसरिया।

नानक गुरमुख सदा सुख पावहै अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनया हर कन्नी गुर सत गुर ना

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट।

चात्रक जल, ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाय। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

रहाओ। जिन हरते आया सब किश तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुखदाता, निखोट न कभी ही जाई। आनंद पया।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भगत।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी।

सतगुर सेव खर्च हर बंद हो मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना हर संत चलाए हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन

हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख।

सुख गर्दव पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग में पवित्र पद।

जवाम। मांगौ राम ते सब थोक, मानुख कौ जाचत श्रम पाइय, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ। कोखे मुन

हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई, जो दिसै सो तेरा।

ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸੰਤ ਆਬ

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई, खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई।

लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी।

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

तिलंग महला चौथा। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां। आए मिल

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

भारत आव हो सुन हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पाओ भागा।

आनंदिनो शब्द रवहो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गाव हो नारी, आनंदिन भगत करहें गुर आ गए, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द बस

समहे रव रहे आसो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहे आसो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवै आसोई गुरमत सच पाई।

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

नाम अखोट निदान है गुरमुखमन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले, तिन की गहन गत कही ना जाई, सच्चा आप सवारे। परम पुलाने से मन मुख कही है, ना उरवार ना पारे, जिसनो नदर करे सोई जन पाए, गुर का

एक निधाना जत संजम तीर्थ उन्ना जुगां का धर्म है कल मह कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी त्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

है कर ही मह सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान आंदन गावै एको नाम इस जुग मह वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखां तह रहया समाई।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

साध संग इस मन है उदारो मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोको दी जयदान प्रभ संतन पगराल उकत सिया।

हूँ अवरकाश सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महल्ला पंजवां।

दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै।

है, सब तृष्णा भुख गवाए, हरड़स पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आए, सच ध्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर

सते सबन से गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समाणी रहा। कृष्ण

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणे छोडह नाही जम दूत ग्रास्यो महा पया बोलै झूठ कमावै अवरा तृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दूखन दे विनासी महा खया।

बिन नरक गया, खिनमह वेश करहै नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करहै विकार विथार कन्हेरे।

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द।

कुटम्ब छोड़ पर पवन करहे ग्रह शरीर महे हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

धर्म चुकाए विण बजाई किंगरी वाजय जोगी सा किंगरी बजाए कहे नानक मुक्त होवहें जोगी साचे रहें समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वड्याई रहाओ सच रहो सदा सह।

इहो शरीर सरवर है संतहो, इशनान करे लिव लाई, नाम इशनान करहे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

संत हो, सतगुरु खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाओ।

छंत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ कह बह सहो कह रही है बाले कह आवहो कह जाहो नानक बोले सुन बै रागी क्या तुम्हारा राहो कट कट वैस निरंतर।

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

कंध सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा किस कारण ग्रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वनजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर

गुरमुख मूल पछाण रहे। नाब पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।